उन पर उनके आमाल के वबाल पड़ गए और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के वबाल अनकरीब पड़ेंगे और वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते।

और उन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की, और कयामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहने हाथ में लिपटे होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक और आलीशान है।

और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।

वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको उस जमीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकान में चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है।

और खुदा सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते, बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है। अवलम्य

और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। अल्लाह।

0: जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज्क मिलेगा।
1: वया

0: याद।
1: जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना काम खुदा के सुपुर्द करता हूँ, बेशक खुदा बंदों को देखने वाला है।

फिर दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा और हमने आसमान दुनिया को चराग़ों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं।

यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

वतन तुझे रोशन की दुआएं, तेरे को हो दमन गुलनार और हवाएं गुलबहार। जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे दुश्मन नाकाम।

0: दीजिए।
1: ऐ वतन, सागर की हर लहर की है ये दुआ कि तेरे रेगजारों में सुर के रंग फूटे, जंगल बयाबानों में मोहब्बत के नगमे गूंजे, भिटाई और सचल के

तन, मेरी सारी वफाएं तेरे लिए, और तू मेरी जीनत, तुझी से मेरा सारा हुस्न, तेरी मोहब्बत मेरा बेशबहा सरमाया, और मेरी जानो माल सब तुझ पर कुर्बान।

रहे हरियालियाँ और फूलों से लदी रहे डालियाँ, ये प्रेम धरती, ये वलियों का देश, यहाँ रब ने घर घर में उतारी हैं खुशहालियाँ।

0: why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh hi nahi main janda baby tu jandi main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: Ek naya andaaz,
3: ek nayi soch,
2: ek nayi pehchan,
3: ek nayi lagan.
2: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया.
3: यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: अस्सलामु अलैकुम. मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. आज के शो का नाम है फैकल्टी आवर और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील असगर मिर्ज़ा. आज का हमारा टॉपिक है फैकल्टी आवर में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग UCP में 4 डिग्री प्रोग्राम ऑफर होते हैं. BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग एंड BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसके साथ साथ हमारा बहुत पॉपुलर प्रोग्राम अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है BSc रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स. बैचलर्स लेवल पर ये 4 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. उसके अलावा हम MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MSc सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं और इन्हीं तीनों शोबों में हम PhD भी ऑफर करते हैं. तो अब जलील साहब, अब शुरू करते हैं. आपका माशाल्लाह से 37 सालों का एक्सपीरियंस है काम करने का. आपने बहुत यंग एज से अपने इंडस्ट्री से काम करना शुरू किया था. तो आपके अपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किए पाकिस्तान में, यानी कि आपने टेलीकॉम सेक्टर भी देखा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी देखा है, डेटा कम्युनिकेशन सेक्टर भी आपने देखा है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आपने वैसे भी आपने काम किया शुरू से अब तक. आपका बल्कि रबता भी रहता है, इवन एकेडेमिक्स में आने के बाद भी आपका उनसे रबता रहा है. तो थोड़ा सा ये जो हमारे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और एंटर होने के बाद आपने क्या देखा है?
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ख़वातीन हज़रात, थैंक यू फैसल फॉर द इंट्रोडक्शन. मैंने अपना कैरियर अर्ली 1988 से स्टार्ट किया था, और दैट वाज द कंपनी नेम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. ये लाहौर बेस एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर करती थी. इंटरेस्टिंगली मैं बताऊँ, थोड़ी सी हिस्ट्री है इसमें, कि आज चूँकि एक सिलिकॉन का दौर चल रहा है और हम कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो वर्ल्ड की जो आपस में जो वार चल रही है वो सिलिकॉन चिप के ऊपर चल रही है. तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना कैरियर उस ज़माने में शुरू किया जब पाकिस्तान के अंदर चिप मैन्युफैक्चर होते थे.
4: Wow.
5: और दैट वॉज द टाइम आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट टीम इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चिप जहाँ फैब्रिकेट होते थे. और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने हाथ से चिप जो है वो फैब्रिकेट करके दे थे. एक प्रोसेस होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में जिसको डाई बॉन्डिंग प्रोसेस कहते हैं, और उसमें गोल्ड वायर के ज़रिए आप सिलिकॉन चिप को मेटल्स पिंस के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये काम मैंने जब आप पहली दफ़ा अपने हाथ से किया था, तो दैट वाज माय स्टार्टअप. एंड सेकंड, फिर इस कंपनी के बाद जो मेरी पहली कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, दैट वाज स्पार्को, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर. ये इन्होंने उस वक़्त इस्लामाबाद में एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सेटअप लगाया था, और ये फ्रांस के सपोर्ट से ये सेटअप लगा था. और यहाँ हम डिफरेंट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा जो है वो रिकॉर्ड करते थे, रिसीव करते थे, और उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग पे काम होता था. तो दैट वाज माय स्टार्टिंग कैरियर. एंड उसके बाद फिर एक लंबा अरसा मैंने प्राइवेट सेक्टर में गुजारा, जिसमें PIA आता है, और उसके बाद पाकटेल एक बड़ा सिग्निफिकेंट नाम था उस ज़माने में, जो सेल फोन कंपनी 1990 में स्टार्ट हुई पाकिस्तान में. तो आई ज्वाइन दैट कंपनी एज ए पायनियर in cellular in Pakistan. And then it is continue on different company. Maine Pakistan ki different multinational companies mein kaam kiya, jisme recently Vare Telecom thi, aur usse pehle main Multinet ek telecom Malaysia ki subsidiary thi Pakistan mein, usme maine kaam kiya. Aur फिर एक सुपरनेट डाटा की कंपनी थी जो पाकिस्तान की पायनियर कंपनी थी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, और जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता था, रेडियो लिंक्स प्रोवाइड करता था डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में. और ये यहाँ रहते हुए यानी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने को मिले, और उसमें यानी हमें कुछ सीखने को भी मिला और कुछ करके दिखाने के भी मौका मिला.
4: तो जली साहब, यू मेंशनड Microelectronics, Suparco, Telecom, and also data communication companies like Multinet. So, which is basically a large ISP.
5: Yes.
4: So to say. So, Dilip sahab, so thoda sa batayenge us waqt ke ISPs mein aur aaj ke ISPs mein kya farak hai?
5: No comparison.
4: Achha.
5: वो एक जब ISP शुरू में बने थे, मुझे याद है आई वॉज इन पाकटेल, तो मैंने यहाँ एक इंटरनेट कनेक्शन लिया था, डेट वॉज डायलअप कनेक्शन. वो एक ईमेल और ब्राउजिंग टाइप का एक सिस्टम था जो पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था इमरान नेट के नाम से. इट इज़ 1991. इंटरनेट पाकिस्तान में 1991 में इंट्रोड्यूस हो गया.
4: मुझे याद नहीं है
5: 1991 में इंट्रोड्यूस हो गया.
4: ये ब्रेन नेट से पहले की बात है?
5: ये ब्रेन नेट से बहुत पहले की बात है. तो दैट वाज ए कंपनी, बेसिकली ये लोग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी. ये इन लोगों ने, दो बंदे थे, एक अमेरिका में होता था और एक पाकिस्तान में होता था. तो ये एक तरह का ऐसा सेटअप था कि जिसको हम ऑफलाइन इंटरनेट या ऑफलाइन ईमेल सेटअप कह सकते थे. हम क्या करते थे कि अपनी ईमेल लिखते थे, एक नंबर पे डायल करते थे, और अपनी ईमेल्स जो है ना उनके सर्वर में, लोकल सर्वर में, पाकिस्तानी सर्वर में डम कर देते. फिर रात के टाइम पे वो लोग अमेरिका की एक कॉल करते थे, जब पाकिस्तान में कॉल रेट कम होते थे, तो वो अपना जितना भी सारे दिन की मेले इकट्ठी हुई होती थी वो अपलोड कर देते थे अमेरिकन सर्वर में, और अमेरिका सर्वर में जितनी मेले आई होती थी वो डाउनलोड कर लेते थे. तो अगले दिन फिर हम अपना इसी तरह जब उसको कनेक्ट करते थे तो हमारी जितनी मेल आई होती थी वो हम रिसीव कर लेते.
4: इस वक्त इंटरनेट का वजूद था कि अभी ये वजूद आने वाला था?
5: कोई वजूद नहीं था, कोई सेटअप नहीं था. ये एक प्राइवेट सेटअप था, लेकिन इस सेटअप ने लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस की कि यार हम भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं. तो हमने अमेरिका में अगर किसी को ईमेल करनी होती थी तो हम बड़ी आसानी से कर लेते थे, और बड़े माइनर से चार्जेस हमें उस कंपनी को, पता नहीं 100 रुपीज़ पर मंथ हम पे करते थे कि 200 रुपीज़ पे करते थे. तो ये एक सेटर 1991 की बात है.
4: जलील साहब, सो ऑल द वे फ्रॉम देयर फास्ट फॉरवर्ड टू राइट नाउ, नाउ वी हैव साइबरनेट, व्हिच वो पहले भी था, अभी भी वो स्टिल गोइंग स्ट्रांग एज अ कंपनी. और जो टेक्नोलॉजीज अब इस्तेमाल होते हैं आपने, मतलब कि हेड ऑल ऑपरेशंस इन भारत, तो डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स इन जस्ट फ्यू मिनट्स क्विकली.
5: मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि सुपरनेट एक कंपनी थी जो पहला स्टार्टअप पाकिस्तान में लाहौर में सेटअप और कराची में और इस्लामाबाद में शुरू हुआ, दैट वाज सुपरनेट. और सुपरनेट के बाद फिर साइबरनेट और ब्रेन नेट और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो है ना ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपना यहाँ अपने सेटअप बनाने शुरू किए. बट वी आर पायनियर इन सुपरनेट. तो यहाँ एक सिस्टम ऐसे होता था कि हम एक सर्वर हमने रखा होता था, तीन सर्वर थे लाहौर कराची इस्लामाबाद में, वो आपस में थ्रू सैटेलाइट, थ्रू PDCL के जो हमारे फिक्स नेटवर्क के ज़रिए, उसको हम कहते थे DSL कनेक्टिविटी, उसके ज़रिए वो कनेक्ट होते थे. और एक हमारा फ्रेमलेस नेटवर्क होता था, यानी ये तीन किस्म के बैकअप उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे. और फिर कराची में हमारा एक सर्वर होता था जो इंटरनेट के साथ, यानी उस इंटरनेट के साथ जो अमेरिका के इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता था, तो ये एक रियल टाइम सिस्टम था जिसमें लोग क्या करते थे कि अपने घर से अपने कंप्यूटर को एक डायलअप मॉडम के जरिए कनेक्ट करते थे पीटीसीएल की लाइन के जरिए, और हमने यहाँ 200-300 मॉडम लगाए होते थे और वो लोग आके अपना डायलअप से कनेक्ट होते थे और हम उन्हें पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते थे।
4: फॉर आवर यंगर व्यूअर्स थोड़ा सा मैं समझा दूँ, जिसको आप लोगों ने तो जब इंटरनेट देखा है तो आपने एक चीज़ देखी है जिसको आप कहते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ये घर में कोई एक वाईफाई राउटर देख के आप समझते हैं ये इंटरनेट है। पहले इंटरनेट ये नहीं होता था, पहले इंटरनेट टेलीफोन लाइन के जरिए होता था। एक बाकायदा आपके कंप्यूटर में एक डिवाइस था, वो एक फ़ोन कॉल करता था टेलीफोन एक्सचेंज को, फिर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती थी। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। सो टाइम फॉर अ ब्रेक नाउ, तो हम वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: Welcome back everyone. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील असगर मिर्ज़ा फैकल्टी आवर में. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. तो जलील साहब, अ क्विक केस स्टडी ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आपने रिसेंटली एक फैक्ट्री को विजिट किया है, सैफायर, जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है, टेक्सटाइल ब्रांड है पाकिस्तान का. तो आपने विजिट किया है वहाँ पे, थोड़ा सा बताइए कि हमारे लिसनर्स को वहाँ पर जाके क्या देखे. बिकॉज व्हेन वी इमेजिन ब्रांड लाइक सैफायर, तो हम सोचेंगे कि वहाँ पे डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे और एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट जो कि होंगे भी. लेकिन व्हेन यू विजिट, आपने जब उनका फैक्ट्री विजिट किया तो आपने क्या देखा?
2: देखिए जी, ये अपना फैक्ट्रीज का जो विज़िट है, ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि मैं एक कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था. तो वहाँ कोई मशीनरी जो थी वो अपग्रेडेशन में जा रही थी, तो मैं उनके वो जो कंपनी अपग्रेड कर रही थी, जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर थे, उनके साथ मुझे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ. ये सिर्फ ओनली सफायर की बात नहीं है, ये एक दो और भी कंपनियां जिनमें निशात भी कंपनी शामिल है.
1: वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी.
2: एग्जैक्टली. तो इधर जब हम जब सोचते हैं कि जिस अभी आपने कहा कि जी वो वहाँ तो सिर्फ
1: डिज़ाइनर
2: का काम है, या यानी मीन के जो आर्टिस्ट लोगों का काम है, तो एक्चुअली ये आर्टिस्ट और डिज़ाइनर जो हैं, ये इनके एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जो कि फैक्ट्रियों में शायद नहीं बैठते. ये एक सेपरेट जगह पे बैठ के ये सब काम कर रहे होते हैं, और इनका काम एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के ऊपर काम होता है, और ये वहाँ ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. लेकिन एक्चुअली जब जहाँ कपड़ा बन रहा होता है, वो एक अलग ही दुनिया है. वहाँ अगर आप चले जाए तो आपको लगेगा कि आप एक शहर में आके, यानी वो वहाँ आपको लगेगा कि ये एक लदा दुनिया है, ये एक कोई नया सिटी है जिसके अंदर हम गेट में एंटर होंगे तो आपको एक लदा दुनिया मिलेगी. अब जब यहाँ जब मुझे वहाँ उनके जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे इंजीनियरिंग के, उनसे बात करने का मौका मिला, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया. मैंने कहा यार आपके पास, हम तो ज़रा इलेक्ट्रिकल के सोल्यूशन के लिए आए हैं, तो यहाँ बाकी चीज़ें कैसे? तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमारे पास हर किस्म के इंजीनियर होते हैं. तो मैंने जब पूछा जी वो थोड़ा एलैबोरेट करें, तो देन दे से कि जी हमारे पास सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, और समटाइम केमिकल इंजीनियर्स भी होते हैं. तो देर आर ए ह्यूज टाइप ऑफ इंजीनियर वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. तो इसके अंदर मेंटेनेंस के काम चल रहे होते हैं, जिनमें ये तीनों टाइप के इंजीनियर, चारों टाइप के इंजीनियर काम कर रहे होते हैं. इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन किसी जगह पे हो रही होती है, किसी जगह पे कोई नई चीज़ बन रही होती है, कोई नया सेक्शन ऐड हो रहा होता है, तो ये तीनों इंजीनियर जो हैं एक इंटेग्रल पार्ट है. तो फिर मैंने पूछा जी आपके पास इंजीनियर कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं गिन के नहीं बता सकता इतने इंजीनियर.
1: वाओ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी की बात, फॉर एग्जांपल,
2: सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. तो और फिर उनका ये भी था, उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो हर वक्त इंजीनियर्स की जरूरत रहती है, यानी मीन के हमारी जो डिमांड है, हमारे तो यहाँ इस तरह का कंपटीशन होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा है, तो यहाँ हमारे अच्छे इंजीनियर्स को तोड़ते हैं एक दूसरे से. तो वो कोई उसको किसी को अच्छी सैलरी ऑफर करके वो यहाँ से इंजीनियर दूसरी कंपनी में चला जाता है, और फिर हमारी एक साल में ही कितनी दफ़ा डिमांड जो है ना रिक्वायरमेंट निकल आती है. तो और ये नहीं है कि ये सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इन सारे इंजीनियर्स की जो है ना वो इस तरीके से डिमांड रहती. तो अब फैसल जरा थोड़ी देर के लिए गौर करो, इससे ह्यूज सेक्टर. अब पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्सटाइल सेक्टर में हम देखें तो ये कोई छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई 11,000 यूनिट लगे हुए हैं. और जब मैं कहता हूँ कि यूनिट लगे हुए हैं, तो ये हर यूनिट एक छोटा सा सिटी है. लोग रह भी अंदर रहे हैं, उनके स्कूल भी अंदर हैं, उनकी मस्जिदें भी अंदर हैं, उनके खाने पीने का बाज़ार भी अंदर बने हुए हैं, सब कुछ उस फैक्ट्री के अंदर है. तो आप अंदाज़ा करो कि ये कितना बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और कितनी ब्लेसिंग है कि हम इतने बड़े सेक्टर को ले कर चल रहे हैं और उनकी इंजीनियरिंग डिमांड को हम उस तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे जिस तरह के हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें मोर इंजीनियर चाहिए, मोर लेटेस्ट इंजीनियर चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं।
1: जलील साहब, आजकल एक परसेप्शन है जो कि आपकी बातों से लगता है कि बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है लोगों का, कि इस वक्त इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिमांड कम है। आपकी बातों से लगता है कि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि जहां पे डिमांड है वहां सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है।
2: 100% आपने सही बात की। इसकी एक मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है ना, हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्कोप और उसका डिमांड किस जगह पे है। हमें एक हम ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो एक तो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक वो लोग हैं जो अपने स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो लार्ज बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं या हम उनको एक मिडिल क्लास, और वो शुरू से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा उनका वो जो है एक ज़्यादा रुझान रहा है। और लोगों अपने बच्चों को ये भी कहते हमेशा से कहते आते हैं कि यार गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर जाके नौकरी करनी चाहिए। तो देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े बड़े अदारे नहीं चला सकती, वो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव कर रही है, वो अपना जो अपना बोझ है वो कम करने के लिए बहुत सारे इदारों को प्राइवेट कर रही। तो ये थोड़ा सा हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए और बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो 27,000 यूनिट पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड यूनिट काम कर रहे हैं, वो आपके लिए मुंतजर है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप यहाँ से पढ़ के 6-6 महीने में देखता हूँ कि NTDC की कोई जॉब नहीं निकली, वापडा की कोई जॉब नहीं निकली, PTCL की कोई जॉब नहीं निकली, तो वो बच्चे बेचारे एप्लीकेशनें दे दे के 6-6 महीने घरों में इंतज़ार करते रहते हैं कि जी हमें इंटरव्यू के लिए कोई बुलाएगा करेगा। और वो लोग जो जाते ही आपको फ़ौरन रखने के लिए तैयार है उनका बच्चों को पता ही नहीं है, वो एरिया हिडन एरिया है।
1: जलील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही है और आपने तो ये साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये कि बस कुछ अवेयरनेस की कमी है और शायद कुछ डिमांड सप्लाई का कुछ सही तरह वो मिल नहीं पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टुडे एंड माय नेम इज डॉक्टर फैसल तूसी साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point 6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीक रहमान और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज हमारे साथ जो शख्सियत बहसियत गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, उनका नाम है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि फार्मेसी का स्कोप पाकिस्तान में क्या है और फार्मेसी प्रोफेशन को पाकिस्तान में कितनी पज़ीराई अभी तक मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
4: वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब।
3: सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सामेईन के लिए आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है और आपने कौन से शोबे में महारत रखते हैं फार्मेसी के, ताकि हम उसके हिसाब से आपके साथ आगे चल सकें।
4: सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर एंड टू टॉक अबाउट अ प्रोफेशन दैट इज रैपिडली इवॉल्विंग and contributing significantly to health care system in Pakistan. अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो सर, मैंने स्टार्ट जो किया अपने एजुकेशनल सिस्टम का, जो मैंने ग्रेजुएशन की वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से की और सेशन था 2004-09 का। देन आफ्टर दैट मैंने एम फिल इन फार्मास्यूटिक्स फ्राम जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, and then I moved to Bahauddin Zakaria University Multan for PhD and I completed PhD there in 2018. agar main apne professional career ki baat karu to maine apna professional career as a teacher start kiya University of Lahore se July 2011 mein, aur maine wahan pe takriban 8 saal serve kiya till 2019, aur uske baad jo hai maine UCP ko join kiya aur since 2019 मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ इन द फैकल्टी फार्मास्यूटिकल साइंसेज एज एसोसिएट प्रोफेसर।
3: डॉक्टर साहब, आपका तो बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, और मैंने एक चीज और भी मार्केट से सुनी है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इसी प्रोफेशन से ही है, तो आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस और रिसर्च प्रोफाइल आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो फार्मेसी प्रोफेशन में खास तौर पे उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
4: जी सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, रिसर्च का थोड़ा सा शौक है, तो इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने को तकरीबन 13-14 ईयर्स हो गए हैं जो मैं लैब में रिसर्च का काम कर रहा हूँ, और अब तक मेरी ऑलमोस्ट 130 पब्लिकेशंस हैं और इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 300 प्लस हैं। लास्ट ईयर लकीली जो है अल्लाह की ब्लेसिंग से मैं बेस्ट रिसर्चर और इनोवेटर था ऑफ UCP, और 2019 में, मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूं तो 2019 में मुझे एमिनेंट रिसर्चर अवार्ड मिला यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए UCP ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, और मैं 2022 में एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट USA का भी मैंने विजिट किया, शॉर्ट विजिट था। एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट मैंने चैपन यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब में भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें कैंसर की जो ड्रग्स थी उनकी डिलीवरी और पेप्टाइड सिंथेसिस पे काम था, तो वहाँ का भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर मिला।
3: वेरी गुड डॉक्टर साहब, आपको तो से सवाल करना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हमारे आम सुनने वालों के लिए और हमारे UCP के सामेईन के लिए कि फार्मेसी है क्या और ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, और ख़ास तौर पे फार्मासिस्ट जो सा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है।
4: सर, अगर हम फार्मेसी की बेसिक्स की बात करें तो इंसान की इब्तदा से ही फार्मेसी का आगाज़ हो गया था, क्योंकि जब इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा तो ज़ाहिर उसके साथ कुछ ना कुछ ये बीमारियाँ और उनका तदारुक भी अल्लाह ताला ने साथ में ही भेज दिया। लेकिन उस वक्त के लोगों को ये शायद नहीं पता था कि ये जो अद्वयात ये यूज कर रहे हैं या जिस प्रोसेस से ये यूज की जा रही है या बनाई जा रही है, ये फार्मेसी का प्रोफेशन कहलाएगा। ग्रेजुअली जो है इसके अंदर चेंजेस आते गए और अब जो है ये जो मेडिसिन की प्रिपरेशन का, मेडिसिन की यूटिलाइजेशन का जो तरीकाकार है, जो प्रोटोकॉल या जो प्रोसीजर है, इसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, दैट इज फार्मेसी। तो अब फार्मेसी बेसिकली है क्या कि इसमें हम ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको डिस्पेंस करते हैं, ड्रग को रिव्यू करते हैं और उनको सेफ और इफेक्टिव वे में पेशेंट को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं। इवन बहुत सारी ड्रग्स जब मार्केट में आ जाती हैं तो उसके बाद भी इसका फॉलो अप लिया जाता है, जिसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं, ताकि पेशेंट को इस तरह से कंप्लायंस दी जाए कि मेडिसिन मार्केट में आ जाने के बाद भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम हमें आ रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका भी तदारुक किया जाए।
3: अच्छा, ये सारे काम फार्मासिस्ट खुद कर रहा होता है, फार्मासिस्ट ही कर रहे होते हैं?
4: सर, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फार्मासिस्ट की ही है कि जितनी भी ड्रग्स हैं आप उनको सेफ और इफेक्टिव बनाएं फॉर पेशेंट यूज।
3: ओके, अच्छा फार्मासिस्ट का, अच्छा मुझे ये बताएं कि फार्मासिस्ट का ये जो रोल, क्या इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयरिंग ऑफ द मेडिकेशन के अंदर कितना मतलब उसका रोल है, मतलब वहाँ पे कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है ना अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकता है?
4: सर, अगर हम फार्मेसी प्रोफेशन की बात करें तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो सब डिसिप्लिन, सब डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अभी आपने एक डिपार्टमेंट का नाम लिया जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में रॉ मटेरियल मीन जो हमारे पास क्रूड फॉर्म में ड्रग आती है, रॉ मटेरियल्स लेकर फिनिश्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग तक जितने भी प्रोसेसिंग है वो फार्मासिस्ट की अंडर सुपरविजन होते हैं और इसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट मिलकर एक मेगा स्ट्रक्चर जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं वो बनाते हैं। इसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आ जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें मेजरली हम अपनी जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, इनको किसी भी सूटेबल डोजेज फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट वगैरह से आप लोग सब फेमिलियर होंगे, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप, ये सब डोजेज फॉर्म है और ये सब इंडस्ट्री के अंदर ही प्रिपेयर की जाती है और इनकी क्वालिटी प्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट की है। तो फार्मासिस्ट अपने अंडर सुपरविजन एक रॉ फॉर्म से लेकर ड्रग को फिनिश फॉर्म तक लेके आता है और उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करता है, ताकि ये मेडिसिन जब किसी पेशेंट तक पहुंचे तो उसके लिए इफेक्टिव हो और जिस मकसद के लिए वो मेडिसिन यूज कर रहा है उसको वो मकसद अचीव हासिल हो।
3: अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, जब मेरा एडमिशन फार्मेसी में फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे नहीं लेने दिया था मेरे बड़ों ने एडमिशन, तो मुझे ये कहा गया था कि ये सिर्फ डिस्पेंसर होते हैं, तो क्या इसका प्रीवियसली क्या इसका रोल ऐसा भी रहा है कि या अभी भी इसका डिस्पेंसिंग का रोल है फार्मासिस्ट का?
4: सर, पाकिस्तान में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग इस प्रोफेशन से अवेयर हो रहे हैं, उनको आइडिया हो रहा है कि ये कितना नोबल प्रोफेशन है। आप तो सिर्फ एक डिस्पेंसर की बात कर रहे हैं कि लोग ये समझते थे कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डिस्पेंसर होते हैं, बल्कि आज से थोड़ा सा पहले की अगर हम बात करें तो लोगों को ये लगता था कि ये सिर्फ मेडिकल रैप है, जो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर को जाके बेचते हैं, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। सेल्स और मार्केटिंग भी एक कह लें कि एरिया है, एक फील्ड है जिसमें हमारे फार्मासिस्ट बड़े इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डिस्पेंसिंग भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसमें प्रॉपरली मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं और ये कोई लेमैन जो है डिस्पेंस नहीं कर सकता। एक फार्मासिस्ट जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वो ही इफेक्टिव वे में इन मेडिसिन को पेशेंट तक डिस्पेंस कर सकता है। कि डिस्पेंसिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने कोई पैकेट जब डिब्बी या कोई टैबलेट उठा के पेशेंट को दे दी, बल्कि आपने उसको प्रॉपर समझाना भी है साथ में कि जो आप मेडिकेशन डिस्पेंस कर रहे हैं इसको आपने यूज कैसे करना है,
3: एडवाइजरी भी करनी है,
4: एडवाइजरी रोल भी है फार्मासिस्ट का।
3: अच्छा, ये फार्म ये जो आप बता रहे हैं, यहाँ से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि को पैकिंग को करके डॉक्टर साहब उसको देना है पेशेंट को, तो क्या मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या डिफरेंस, हम अपने असामीन के लिए क्या बात कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में?
4: देखिए सर, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी अगर हम इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन देखें तो लोगों के जेहन में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो छोटी शॉप होगी वो मेडिकल स्टोर है और जो जरा बड़ी शॉप होगी वो एक फार्मेसी कहलाती है। ऐसा नहीं है। स्टोर के अंदर जो मेडिकल स्टोर है उसके अंदर जो आप मेडिसिन स्टोर करते हैं उनमें और जो एक फार्मेसी के ऊपर मेडिसिन स्टोर की जाती है उनमें डिफरेंस है। एक स्केड्यूल या शेड्यूल जी की कुछ ड्रग्स के बारे में हम सुनते हैं, नॉर्कोटिक्स के या कंट्रोल ड्रग के बारे में हम सुनते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो फार्मेसी के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट डिस्पेंस की जाती है। एक आम मेडिकल स्टोर के ऊपर ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं होती।
3: अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का होना भी जरूरी होगा और मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई खास जरूरी नहीं है, क्या मैं इससे ये मतलब ले सकता हूँ?
4: नहीं सर, अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बल्कि ये तो बड़ी पहले से इस चीज को कोशिश की जा रही कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर मेडिकल स्टोर है तो जो क्वालिफाइड पर्सन है, अब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट जो फार्मासिस्ट होता है उसको भी दिया जाता है, तो वहां पे क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। जबकि जो फार्मेसी है उसका लाइसेंस सिर्फ कैटेगरी ए हासिल करने वाला जो पर्सनल होगा, क्वालिफाइड पर्सन होगा, उसको दिया जाता है। तो रेलेवेंट क्वालिफाइड पर्सन का रेलेवेंट प्रीमिसेस पे होना जरूरी है। तो मेडिकल स्टोर जो है उस पे उसके अकॉर्डिंगली लाइसेंस होल्डर पर्सन होगा, और फार्मेसी के ऊपर जो कैटेगरी ए हासिल करने वाला क्वालिफाइड पर्सन है जिसे हम फार्मासिस्ट कहते हैं, उसका होना जरूरी है।
3: सामीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, और अब हम चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। वो डॉक्टर साहब के साथ वापसी पर हम सवाल करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन या फार्मासिस्ट इस वक्त फेस कर रहा है। डॉक्टर साहब, छोटे से ब्रेक के बाद आपसे चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के बारे में कि फार्मेसी प्रोफेशन को कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान में फिलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, काइंडली मुझे ये बताएं कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशन को जो चैलेंजेस इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बारे में आपकी माहराना राय क्या है? क्या ये चैलेंजेस कभी ख़त्म होंगे कि हमेशा ये हम सुनते रहेंगे कि फार्मेसी जो सी ना प्रोफेशन अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी प्रोग्रेस कर रहा है? लास्ट वन डेकेड के अंदर अगर हम बात करें तो कितना चेंजेस आप फील कर रहे हैं जब से आप प्रोफेशन में हैं?
2: डॉक्टर साहब, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आपको पता है कि लाइफ में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। एक चैलेंज ख़त्म होगा तो फिर नया चैलेंज आ जाएगा, तो वक्त के साथ साथ चैलेंजेस की जो हैयत है या नोयत है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि जी हमें नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट के नंबर्स कम हैं। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उसके ऊपर हमने फोकस किया और नंबर्स बढ़ाने की कोशिश की गई। वक्त के साथ साथ नंबर्स बढ़ते गए, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ हम उन नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में शायद क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर गए। लेकिन इस वक्त जो करंट एरा चल रहा है उसमें शायद नंबर्स के साथ साथ अब हमें क्वालिटी की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम क्वालिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ही आगे जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको क्वालिटी लाइफ की तरफ ले जा सकेंगे। क्वालिटी प्रोफेशनल्स होंगे, क्वालिटी फार्मासिस्ट होंगे, तो इंडस्ट्री में हम क्वालिटी की मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकेंगे, क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ द पेशेंट को हम इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इसलिए अब सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें और क्वालिटी प्रोफेशनल्स, क्वालिटी पर्सोनल्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो क्वालिटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और UCP उनमें से एक है। बहुत सारे और भी इदारे हैं जो चाह रहे हैं कि उन वहाँ से पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं जब मार्केट में हैं तो वो उनका नाम पैदा करें, उसमें बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या आप नहीं समझते कि जब से एक लोग ये समझते हैं, हमारे जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जब से प्राइवेट एजुकेशन आई है, प्राइवेट सेक्टर आया है, उस वक़्त से लेके अब तक हमारे पास क्वालिटी प्रोड्यूस करना होना बंद हो गई है। ये मैं आई एम सॉरी, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को वो कर रहा हूँ, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे बहुत सारे सीनियर्स इस बारे में कहते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन ने, प्राइवेट सेक्टर ने फार्मेसी का भट्ठा डुबो के रख दिया। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है?
2: सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात 100% दुरुस्त होगी, क्योंकि अगर आप स्टैट्स निकाल लें, गवर्नमेंट जॉब जो प्रीवियसली या रिसेंट पास्ट में आई हैं, अगर आप उनमें गवर्नमेंट जॉब्स देखें तो बहुत सारे ऐसी सीट्स हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने ही फिल किया है। दूसरी बात ये कि CCL में कुछ अरसा पहले एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं अपनी सीट्स जो वेकेंट सीट होती है उनको फिल करने के लिए। तो आपको ये बात सुनकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पे 12 सीटों पे कम्पीट करने वाले बहुत सारे फार्मासिस्ट थे, लेकिन वो 12 की 12 सीटें जो हैं वो ऑक्यूपाई की UCP के स्टूडेंट्स ने, और UCP एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। दूसरे सर, आप देखें, जो मैं चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी टीचर्स हम देखते हैं, रिसर्चर देखते हैं, वो अपने 100% एफर्ट जो वो पुट कर रहे होते हैं। एक थोड़ा सा जो बीच में इश्यू आता है वो आता है मेरिट का। चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टूडेंट आते हैं वो बहुत हाई मार्क्स लेके आ रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली उनके मार्क्स कम होते हैं। अब इससे हरगिज आप ये मतलब ना ले लें कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते या उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो कम होता है, बस डायरेक्शंस का जो है डिफरेंस होता है। अगर आप उन स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन पे ले आते हैं, राइट पाथ पे ले आते हैं, और उनके साथ एफर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में जाके, जो मार्केट का सर्वे हमें बताता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो होगी प्रोफेशन के हिसाब से चैलेंजेस जो आप कह रहे हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और हो भी रहे हैं हमारे पास, और फार्मासिस्ट की इस वक्त कमी भी है हमारे मार्केट के अंदर, और उसको फुलफिल करने के लिए शायद आपकी बात से मैं यही अखज़ कर रहा हूँ कि उसको फुलफिल करने के लिए जितनी शॉर्टेज थी फार्मासिस्ट की पाकिस्तान में, वो ये प्राइवेट सेक्टर ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है, और अभी भी हमारे पास फार्मासिस्ट जो हैं वो कम है मार्केट के अंदर। तो सेकेंडली ये तो होगी फार्मासिस्ट के हवाले से, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, कम्पिटेंट फार्मासिस्ट के हवाले से। अगर मैं कम्युनिटी के हवाले से चैलेंजेस की बात करूं, क्या हमारे कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की जो अवेयरनेस है क्या उस तरह से उजागर हुई है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, कि अभी तक हम उसी डगर के ऊपर हैं कि जाके मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे और वो बगैर किसी चेक किए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को और मेडिकेशन उठा के दे देंगे। कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें, या हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से बात करें, या फिर हम इनका रोल डिफरेंट हमारे जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स में, इनके बारे में फार्मासिस्ट के रोल का हमारी कम्युनिटी को पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो ये किस तरह से हम इसकी अवेयरनेस हम इसकी डेवलप कर सकते हैं? आप इस बारे में फर्दन फर्दन अगर आप बात कर सकें, पहले कम्युनिटी की बात कर लें फिर उसके बाद हॉस्पिटल की बात कर लें, तो काइंडली इसके बारे में आपकी क्या राय है?
2: टू बी ऑनेस्ट सर, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो वो हमारी सोसाइटी में बहुत स्लो है। अगर आप अभी भी जो बड़े शहर हैं उनसे हट के देखें तो आपको शायद ही कहीं फार्मासिस्ट नज़र आए फार्मेसीज के ऊपर, या लोगों में उसका उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है फार्मासिस्ट का आपको लोगों में मिले, जो कॉमन पॉपुलेशन है उसमें मिले। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो फार्मासिस्ट है अगर वो फार्मेसी पे होगा तो उससे कितना एक बेनिफिट हमें हो सकता है।
1: माजरत के साथ जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा या आपसे मैं ये पूछना पसंद करूंगा कि क्या फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को अश्योर करना हुकूमत वक्त का काम नहीं है, या किसी खास इदारे का काम नहीं कि वो फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को फार्मेसी पे अश्योर करे? कि इतनी एथिक्स तो अभी तक हमारे अंदर है नहीं कि हम अपने फार्मेसी का लाइसेंस लेके उसमें फार्मासिस्ट को या क्वालिफाइड पर्सन बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर में हम उनको क्वालिफाइड पर्सन को भी बिठाएं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं कि रेंट आउट कर देते हैं, बी कैटेगरी वाले अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं और फार्मासिस्ट अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड सा चले जा रहा है जो अजल से हम देख रहे हैं। तो इस चीज़ को अश्योर करने के लिए हमारे कुछ मखसूस इदारे होंगे जो उसको अश्योर करेंगे कि हाँ भाई इसको फार्मासिस्ट को वहाँ पे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक ये चैलेंज मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा उस वक्त तक क्या समझते हैं कि क्या हम इस चीज़ को फार्मासिस्ट के रोल को उजागर कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर?
2: देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इशू आपने रेज किया है ना सर, इसमें हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, कहीं पे हमारे जो रेगुलेटरी जो इदारे हैं उनकी कोताही है, तो कहीं पे हमारी खुद की भी इसमें कोताही शामिल है। रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं अगर वो इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को हार्ड एंड फास्ट कर दें कि ये इम्प्लीमेंट होने ही चाहिए तो डेफिनेटली उससे बेहतरी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें इस चीज़ को अश्योर करना चाहिए कि हम अपने जो लाइसेंस हैं, हमारी जो कैटेगरीज हैं वो रेंट आउट ना हों। अगर हमारी कैटेगरीज रेंट आउट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आज जो हम कुछ पैसों की खातिर अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं तो हमें कुशन दे देते हैं उन लोगों को कि वो हमारी इस कैटेगरी को यूज करते हुए अपनी मर्जी से लोगों की सेहत के साथ खेलें, जिस तरह की ड्रग्स वो रखना चाहें, जिस तरह की मेडिसिन वो रखना चाहें वो रखें और अपनी मर्जी से सेल करें। लेकिन अगर हम इस चीज को बाउंड कर दें, खुद से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं जी हमने अपनी कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी बल्कि फार्मेसी पे हमने खुद खड़े होना है, तो उससे एक तो हमारी अहमियत लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और जो एक नोबल प्रोफेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का उसमें को हम सही सर्व कर सकेंगे। जब एक फार्मासिस्ट होगा और उसके सामने जब प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो जिस वे में, जिस तरह से एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, एक लेमैन नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन होता है, ये कॉमन सी एक बात है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को देखता है, उससे चाहे किसी को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, उसने सिर्फ अपना बेनिफिट लेना होता है। बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन है जो अपने बेनिफिट के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करना चाह रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ साथ हम खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें और अपनी कैटेगरीज को रेंट आउट ना करें, और दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज़ को अश्योर करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी पे ज़रूर होगा, क्वालिफाइड पर्सन की जो प्रेजेंस है उसको कन्फर्म करें, अश्योर करें, तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में, फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से, फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से। मुझे ये भी साथ साथ बताते जाएं कि क्या जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर या पेशेंट, कि वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, कि उस वाकई पता लगे कि यहाँ पर ये बंदा फार्मासिस्ट है और वो कौन कौन सी चीज़ों को चेक कर रहा है और वो पेशेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चेक करेगा पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद।
2: देखिए सर, जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है फार्मासिस्ट के बाद, तो जो प्राइम रोल बनता है फार्मासिस्ट का वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को एवेल्युएट करे और उसके अंदर अगर कोई एरर है तो वो उन एरर्स को ओमिट करने की कोशिश करे।
1: एरर यहाँ पे किस किस्म के हो सकते हैं डॉक्टर?
2: प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखने को आया है कि डोज से रिलेटेड, यानी एक दवा है उसकी एक मखसूस मकदार जो है वो पेशेंट को लेनी है, लेकिन बाज़ अकात डोज जो है वो गलत लिखी होती है, बाज़ अकात गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, बाज़ अकात ये होता है कि एक ही मेडिसिन दो अलग अलग नामों से प्रिस्क्राइब की होती है। तो एक पेशेंट को अगर एक मेडिसिन चाहिए और वही मेडिसिन दो नामों से वहाँ पे लिखी हुई है, तो वो एक ही वक्त में दोनों मेडिसिन जो अलग अलग नाम से लिखी हुई है, यानी एक मेडिसिन जो दो अलग नाम से लिखी हो वो ले लेगा, तो ओवरडोज हो जाएगी जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो फार्मासिस्ट है उसका यही रोल है कि इन जो एरर्स हैं, ये जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उनको देखे और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस करते हुए जो पेशेंट है उसको काउंसिल भी करे कि इस मेडिसिन को आपने कैसे लेना है। और अगर आप जो मेडिसिन, बाज़ों का पेशेंट रेजिस्ट भी करते हैं कि डॉक्टर साहब ने या एक्स वाई जी किसी ने भी उनको मेडिसिन ये लिख के दी, तो आप उसको निकाल के हो रहे हैं, तो अभी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर गाइड करे कि उसने अगर ये मेडिसिन उसमें से निकाली है या इसकी डोज कम की है या बढ़ाई है, तो वो किस वजह से बढ़ाई है, ताकि पेशेंट जो वो मुतमिन हो सके।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपकी इस बात से तो मैंने ये खर्च किया है कि फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है, अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन को तो फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है और उसको पता है कि कौन सी मेडिकेशन किस वक्त पे देनी है और किस तरह से देनी है, तो इससे तो यही सामने आ रहा है। तो हम इन चैलेंजेस तो हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन में डॉक्टर साहब बहुत सारे हैं और इन चैलेंजेस को हम डिस्कस करते रहेंगे, और अभी हमने कम्युनिटी फार्मेसी के एक चैलेंज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक पे और उसके बाद फिर हम दोबारा इन्हीं चैलेंजेस को सामने रखते हुए, हम हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए आपसे कुछ इस्तफादा लेंगे। और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया, और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही मोजेस गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने कम्युनिटी फार्मेसी के चैलेंजेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से फार्मासिस्ट का रोल हॉस्पिटल के अंदर भी है, तो आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा और वो कितना कलीदी किरदार अदा कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये भी एक चीज सुनने में आई थी कि डॉक्टर नर्सिस एंड फार्मासिस्ट की एक ट्राइंगल होती है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सही तरीके से काम कर रही है? क्या इस चैलेंज से हम अभी तक बाहर निकले हैं कि नहीं निकले? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा भी प्रोफेशन यही है, तो मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का इस हॉस्पिटल के अंदर अभी तक कितना रोल डेवलप हो चुका है और कितना होना बाकी है।
2: डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये एक कह लें कि इसके तीन पिलर हैं, एक डॉक्टर्स, नर्सेस और फार्मासिस्ट। तो जब तक ये तीनों पिलर जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, हम इस हेल्थ केयर प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा सकते। इसमें अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन एक्सपर्ट कहा जाता है, यानी अगर आपने मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए। और आगे से फार्मासिस्ट जो है उसको भी टैग मिला हुआ है मेडिसिन एक्सपर्ट का, तो उसको भी उस मेडिसिन एक्सपर्ट का जो टैग है उसको जस्टिफाई करना है। और वो जस्टिफिकेशन कैसे होगी? थ्रू नॉलेज, थ्रू कॉम्पिटेंसी, थ्रू एक्सपर्टीज। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि फार्मासिस्ट के बगैर हम हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फार्मासिस्ट का साथ में होना जरूरी है। जहां तक आपने बात की हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज की, तो यहाँ पे बदकिस्मती से मुझे चंद एक हॉस्पिटल के अलावा कोई बड़ी एग्जाम्पल सामने नजर नहीं आ रही जहां मैं ये बताऊं कि वहां पे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो रोल है वो उस सही मानों में अदा किया जा रहा है। हम आप देखते हैं कि हमारे पास आगा खान की एग्जाम्पल है, हमारे पास शौकत खानम की एग्जाम्पल है, जहाँ पे सही मानों में जो फार्मासिस्ट हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अब ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, वो सिर्फ मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग तक ना रहें, सिग्नेचरी अथॉरिटी को इंजॉय ना करते रहें, बल्कि वार्ड के भी विजिट करें जहां पे वो सही मानों में देख सकें कि पेशेंट को मेडिकेशन की किस तरह से नीड है और उसके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल के अंदर वो सर्व कर सकें। तो जब तक हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, जो उनका एक्चुअल रोल है वो उनको वहां पे अदा करना पड़ेगा, तभी ये हेल्थ केयर सिस्टम जो वो आगे ग्रो कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सहरासिल गुफ्तगु हो रही है और इस गुफ्तगु को ख़त्म करने को कतई तौर पर दिल नहीं कर रहा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करें और आपके साथ एक नया अगला सेशन रखें। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी दें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हम इसी चीज़ को, इन्हीं चैलेंजेस को ही हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस से ही अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो क्या आप नेक्स्ट अवेलेबल हैं? क्या आप हमें टाइम देंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो फैला सकूं, लोगों को बता सकूं कि एक फार्मासिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम के लिए, इस हेल्थ केयर सिस्टम और इस हेल्थ केयर सिस्टम की प्रोग्रेस के लिए एक फार्मासिस्ट कितना ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले आपके साथ जहाँ बैठ के इस तरह की डिस्कशन करने का और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का।
1: इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू द FM 92.6 UCP।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं, बल्कि

से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। PTA

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.